कहे कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोए आसा। जो मैं रूप किए बहुतेरे अब हुन

गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अरफेन बुद बुदा, जल ते भिन्न न होई, इहो प्रपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। मिथ्या परम अर सुपन मनोरथ, सत

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत् ज्ञान कल्याण निधन हर नाम मन रमन चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हित।

दुख अधिक जन्म मरण पज शरण सतगुर उबर है हर नाम रिज रमण गुरमत निहचल मन मन मनं सहज विचारं गुरमत निहचल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं भय पाए भगत तर।

जिन लाग हर लिव तुम्हारी जी जंत सभे ही नाचे नाचह खानी चारी जो तुद भाव है से ही नाचह जिन गुरम

बंधन तोड़े सच वसै अज्ञान अंधेरा जाए। सब किछ देखै तिसै का जिनकी आ तन साज। नानक शरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी

खंडन। आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन। आप विवेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन।

मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पीलाए जमकाल। इत मद पीते नानका बहुते खटिय है बेकार।

गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवै सोए, गुरमुख शब्द

चलिए जो हर प्रभु का मैं देश नेहा तिस मन तन अपना देवा नित पखा फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी ढोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर

निर्मल मन करण कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा।

सदा सुख बसहि, सदा सच रत्ता मन निर्मल आवन जान रहाए। दूजै पाए परम विभूति।

अवर न पाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सो पाखिया।

राम। हर हर सतगुर करहे भक्ति, जा हर प्रभ कृपा तारे। मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली, गुर सतगुर प्राण हमारे। कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया, हर हर नाम।

गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बन जारो। पुंडड़े नाम विसारिया बुडड़े क्या तिस चारो, गुण छोड़।

पाए। वडहंस की वार महला चौथा, लला बहली माँ की धुन गावणी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला तीजा, शब्द रते।

पौड़ी। तू करता सब किश जानदा सब जी तुम हरे, जिस तू भावै तिस तू मेल लह, जिस तू भावै तिस तू मेल लह। क्या जंत विचारे तू करण कारण समरथ है, सत सिरजन हारे जिस तू मिल है प्यारिया, सो तुद मिले।

पदे अपना कर मूस्त राख न सा कहे की पर कर जोहन लागा कर दर राख है जे रस चाख है जो

आओ जो अंतर सो बाहर देखो अवर न दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलताओ ठाक रखो कर अपने।

थापै साथ संगत बुद्ध पाई साकत का बकना इउं जानौ साकत का बकना इउं जानौ जैसे पवन चुलाई कोट पराध अशाद्यो इहु मन।

गुर पूरे की बाणी पार ब्रह्म मन पाणी नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी।

जो हर दासन की उस्तत है सा हर की वड्याई हर अपनी वड्याई भावदी जन का जयकार कराई सो हर जन नाम ध्याएंदा हर हर जन एक समान जन नानक हर का दास है हर पैज रखो भगवान।

बन खंड जाए जोग तप कीनो कंद मूल चुन खाया नादी बेदी शब्दी मोनी जम के पटै लिखाया।

भया भिखारी अच्छत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म।

सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय तहर जन्म मरण पह पहागी जो

तुल्हा हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जपियो तरह तराकी हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जप

हर के संत जप्यो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अगन बुझानी शिव चरयो चंद चंदा की तुम वड पुरख

सुख है स्वामी, शरण साधु आया, संसार सागर महा बिखड़ा, पल एक माहे तराया, पूर दया सर्व छाई, गुर ज्ञान नेत्री अंजनो, बिनवंत नानक सदा सिमरी, सर्व दुख

हर हर हर भगत दृढ़ावहो हर हर नाम उमाहाराम हर हर नाम दयाल त्याहा हर कै रंग सदा गुण गाहा हर हर हर जस

चौथा रस रस राम रसाल सलाहा मन राम नाम पीना लैलाहा खिन खिन भगत करह दिन राती गुरमत भगत उमाहा राम हर हर हर गुण हर हर गुण गोविंद जपाहा खिन खिन भगत करह।

परमेश्वर है, आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वतर रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है। देखन सुनन सुनावनो मन महेंद्रिय साच, पूर रहो सर्वतर मैं नानक हर रंग राच। पौड़ी हर एक निरंजन गाई है, सब अंतर सोई करण कारण।

विचार विखम थान हुंजन रखिया तिस तिल ना विसार प्रभ विसरत सुख कदे नाहे जस है जन्म हार। श्लोक

गए। सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग, हर सिमरत तन मन हरिया लह जाहे विजोग। साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग। श्लोक कुटुंब जतन करण माया अनेक उदमहि।

तिन प्रभ आप बुलायो रहाओ। हर कथा हर जस साध संगत स्यों, एक मोहत ना एव मन लायो। बिगस्यो पेख रंग कुसुम्ब को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल स्यों पाओ ना कीनो, नह सतपुरख मनायो। तावत कौ ताव है बहु पांति, ज्यों तेली बलद परमायो। नाम दान

जस उत्तम खट दर्शन गाव है राम। शंकर करोड़ तैतीस आयो नहीं जान्यो हर मरमाम। सुर नर गण गंधर्व जस गाव है।

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ, तिस जन कौ मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो, तन माया संपै तिस देवो, जिन हर मीत मिला।

तिलंग महला चौथा हरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां बलिहारी गुर अपने गुर कौ बल जाइयां आए मिल।

तहो सदवारिया जिन दितड़ा नाओ सो तन गुरु शाबास है हर देश नेहा हो वेख वेख गुरु विकसिया गुर सत गुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना भुख सब जावी हर का मार्ग आखी है कहो कित बिद जाई है।

ऐसा इस हर धन का शाहर आप है संत हो, इस हर धन का शाहर आप है संत हो, जिसनों दे सो हर।

सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचै रंग राता गुर कै सहज सुभाए। मनमुख

मन मुख दज मरन जमपुर बधे मारी है वेला ना लहन गुरुमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन आत्म राम प्रगासया सहजे सुख रहन गुर का शब्द विसारे।

सरोवर है, वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है, वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया, से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों, गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया, गुर भाणा मन लैन। वडभागी

तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई। सच्चे उपजै सच समावै मर जन्मै दूजा होई। नानक सब किश आपे करता आप करावै सोई। सच्चे भगत सो है दरबार।

आनंदिनो शब्द रवहो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए हर गुण गाव हो नारी आनंदिन भगत करहें गुर आ गए सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द वस

गुर शब्द रवै रव रहयास प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रवया सोई गुरमत।

सार गुर संत जनों प्यारा मैं मिलिया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे हो मन तन देवा सतगुरै मैं मेले प्रभ गुण तासे धन धन गुरु वट।

मन मोह मद सगल ब्यापी कर कृपा आप निवारे कहो नानक पै सागर तरिया पूर्ण काज हमारे गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो।

तह जन्म न मरना, तह जन्म न मरना आवन जाना, बहुण न पाईए जुनिए, नानक गुर परमेश्वर पाया, जिस प्रसाद इच पुनिए।

नाम अखोट निदान है गुरमुख मन बसिया कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया सेवक पाए से जन मिले जिन हर जप जपिया।

गुर वचनी मन सहज ध्याने हर कै रंग रत्ता मन माने मन मुख भरम भुले बौराने हर बिन क्यों रहिए गुर शब्द पछाने।

मन मुख बंद विचारे। सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रह हर नाले, तिन की गहन गत कही ना जाई, सच्चा आप सवारे। परम पुलाने से मन मुख कही है, ना उरवार ना पारे, जिसनों

हर हर जागते पूरे परवाना कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए चूके मन अभिमान कहत सुनत सबे सुख पावे मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

उपेक्षा कर ही मह सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभिमान सद ही लागा सहज ध्यान आंदन गावै एको नाम इस जुग मह वड्याई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई जह देखां तह रहया समाई।

तन तन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाए बस हो वड पागनी सखिए संता संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरण ना आवन जाना।

ही घट घट आप अलिपना आपे अवगत आप संगरचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बिलावल महला पंजवां।

सफल सो आया बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत साथ ना माया साध संग सब दुख मिटाया रव रहया

निस्बा सरमन अनद होत चितवत किरपाल रहाउ। जगत उदारन साध प्रभ तिन लाग हो पाल, मोकौ दीजै दान प्रभ संतन पगराल। उकत सिया

पांड हर संग सहाई महामीत तिस स्यों तेरा भेद विधा पंच बटवारई उपजियो महाखेद नानक तिन

दृष्ट दृष्टाय अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिया।

मन अवर ना भावे चरनावे चरनावे उलझियो आलम करंद कमल ज्यो अनरस नहीं चाहे एक हर लाहे अनते टूटी है रिखते छूटी है मन हर रस घूटी है।

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश कुशैया शरण परे से जन उबरे ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठार है मह चंदन ऊतम चंदन निकट सब चंदन हुईया साकत कूड़े

सब विद हर हर आप बनैया जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवै जो तुर लिखिया सो मिटै ना मिटैया रतन पदार्थ गुरमत पावै सागर भगत भंडार खुलैया गुर चरणी एक शर

रख रख चरण हर ताल पुरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावे, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चुवै अत निर्मल, जिन पिया तिन ही सुख लहिया, मन हठ कर्म करै।

उपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरैन गुण उच्चरै हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा।

भारत है सब तृष्णा भूख गवाए हरड़ पी संतोख हुआ सच वस्या मन आए सच त्याए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सच्चो दहद।

हैं सगले कुल उधरे, नाम हमारे कार्य सीध, नाम संग इहु मनुआ गीद, नामे ही हम निरपौ पहे, नामे आवन जावन रहे।

पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरण हर गुण रमत नाही जम पंथ महाविचार पंच दूथ है मंथ।

राम कली महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजै लोक सुने पत झोली मंगण कै ताई भीख्या नाम पड़े।

पछाणे। ऐसा ज्ञान विचारे कोई तिसते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई। ताकि गत मित अवर न जाने गुरबिन समझ न होई। पुरख मह नार नार मह पुरखा बूझो ब्रह्म ज्ञानी। धुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया गुरमुख अकथ कहानी। मन मह जोत जोत मह मनुआ पंच मिले गुर भाई नानक।

जोगी जुगत सहज कर वासै एक दृष्ट एको कर देखिया भीखिया पाए शब्द तृप्ता सह रहा।

तह हर हर हर रस भोगनी रहाव। सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचय जत कत पेखो हर गुनी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना तह आकार नहीं मेदनी। सदगुर जोग

बिचारी सोग हरख मह दे बिरधानी साकत एवही करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माहे इहो निधाना साधू पाहे नानक गुर गोविंद जिस तूठा घट घट रमैया तिन्ही दीठा राम कली महला पंजवां पंच शब्द।

फलत पलत होहे दोहें सुहेले अचर्ज पुरख त्याओ रहा उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब होवह मीत निर्मल तेरा होवै चीत सब ते उत्तम इहो करम सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म

खिन महवेश करह नटुआ ज्यों मो पाप महंगलत गया। इत उत माया देख पसारी मो माया कै मगन भया करह विकार विथार कन्हेरे।

गुरमुख के ती शब्द उधारी संत हो रहाओ। ममता मार हों मैं सुख है त्रिभवन जोत तुम्हारी, मनसा मार मने मह राखै सतगुर शब्द भी।

ये कुटंब छोड़ पर पवन करह ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है। इहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इस मह रोग वड्डा तृष्णा माया।

आई। सतसंगत मह नाम निर्मोलक वड्डा भाग पाया जाई। परम ना भूलहो सतगुर सेवहो मन राखहो एक ठाई।